तिलंग बड़ा प्रसिद्ध मनोहर अते सरल राग है। इस राग नूं साधारण श्रोते भी बड़ी सौखी तरह पहचान लेंदे हन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच तिलंग राग दे सिरलेख हेठ दो राग प्रकार उपलब्ध हन। बाबर बाणी जिस विच पाप दी जंज, जोरी मंगे दान, रत का कुंगू, अगत पड़े शैतान आदि शब्द हन जो भयानक दृश्य बनाते हैं, पर प्यारे दा रायसा होने करके परमेश्वर दी लीला समझ जग्यासु पाने विच टिकदा है। इस राग दे स्वरूप विच दोनों निषाद रिश्वत दैवत वर्जित अते होर शुद्ध स्वर लगते हैं। वादी गंधार संवादी निषाद इस नूं दिन दे तीजे पहर गाया जाता है। दिन दे तीजे पहर गाउण दी परंपरा श्री हरिमंदर साहब जी जो कीर्तन का सोमा है दी पुरातन परंपरा है। इस राग का पहला शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं बीबी जसविंदर कौर जी। रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दी और शब्द दी तुक है मीरा दाना दिल सोच मुहब्बत मन तन बसे सच साह बंदी मोच। दूजे शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। है तू है तू हो वनहार अगम आगाध ऊच अपार। पहला शब्द श्रवण करो मीरा दाना दिल सोच।

0: देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं. इसे इट्स अप टू अस टुगेदर.
1: आप जपाए जपे सो नाओ. गुरु गोबिंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं. अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मनन गे? मनन गे जरूर.

0: गंगा।
1: हाथी भी बने
0: ते पानी के जानवर मछियां मां भी बने, कई जानवर बने। ये नहीं पता भाई किसे दी मच्छी नु कुंडी पै गई है तो आ गई है निकल के पानी तो बाहर जो उथे मर गई है, क्योंकि ओदा आधार पानी है, ओदा जीवन पानी है, ओदी प्रीति पानी नाल है। पानी तो कटो ते मर गई, पर जून तक भोगी ना उसने, जन्म ते लिया ना।
2: कई जन्म गज मीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर्प होए।

यह जन्म प्राप्त होया। भावे पढ़न विच आया प्यो फलां जन्म विच सी, फिर मुड़ के आ गया, फिर आ गया, उसनों फिर जन्म पै गया, मिल गया, तो उन्हों थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म दी है। यह बारहों पढ़िया मैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान, असि ते गुरु साहिब दे अन्यायी हैं ना, इन्हां फरमान इन्हां दे वचन प्रवचन सतगुरु वचन तुम्हारे अटल ने। ओ कहंदे ने कबीर मानस जन्म दुलंब है होए ना पारे बार, अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होए गिरे और ना लगे डर। दोबारा यह जन्म प्राप्त नहीं होना, भाव मानस जन्म नहीं मिलना। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे दे सिर विच खारिश बहुत है, बहुत तकलीफ है, दोनों हाथों नाल खनूई जांदा है, खनूई जांदा है। कई बार ते खनूंदिया खनूंदिया नाखन नूं खून भी लग जांदा है, पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और खुरक ते किन्ना लकोलो ते प्रगट हो ही जांदे। किसी सियाने ने बंदे नूं कहा बड़ी तकलीफ विच आ तू, इहदा कोई प्रबंध कर, कहिंदा सुनो वड्डिया ज्ञानिया इहदा तां कोई नहीं, मैं चल लूं, मैनूं इह दस वी अज इस नेर कोठरी विच मैं वड़ गया आं, इह तों बाहर किवें निकला, एडा महल ते इहदे विच नेर कोठरी विच मैं वड़ गया, मेरे कर्मां ने वाड़ दित्ता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह माह के आरंभ विच कहंदे ने कि इंसान देख तू अपने वल, दो कारणा करके तू प्रभु नाल विछड़ गया है। वो कहन लगा इंज कर, इस महल की जिस कोठी विच वड़िया है तेरे सज्जे हत्थे दी कंध है, कंध नाल हथ ला के तुरिया रहे, बापू जी भेजदा ना बुलाया करो इत्थे बैठ के खिमा कर, मैं भी खबर सारी मंगदा जी, हां जी तेरे सज्जे हत्थ दीवार है। वो कहंदा मैं नेत्रहीन भी हां, माने गुरु जी कहंदे ने हम अंधले अंत बिखे भी फिराते, असि अन्ने हां, भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं, साडे ज्ञान दे और विरों दे चक्षु नहीं हां। मैनू दस कहंदा ले मैं तेरा हाथ दीवार ना लवा देना, ऐ तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे, जिथे दरवाजा आओ ना उस झट बाहर निकलने, पर इहदे माड़े भागां नूं इन हाथ ते ला लिया, पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा पिछड़े नूं उसने खुर करन लग पैंदा, तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा, दरवाजा निकल गया, इन दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया, बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका यही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु का सिमरन बारं बार बार प्रभु जपिए, पी अमृत मन तन तरपिए, इथों दी बाहर निकल होना। इसे जन्म विच ऊट नू कुछ नहीं पता, शेर नू कुछ नहीं पता, कुत्ते नू कुछ नहीं पता। देखो जिन्ने ज्ञानी ने, जिन्ने विज्ञानी ने, जिन्ने महापुरुष ने, जिन्ने संत जन ने, जिन्ने महात्मा ने, जिन्ने गुरु पीर होए हन, सारे यही समझाते हैं। पर एदी हाल आ हा तां गुरु सच्चे पातशाह सासन जी एक बार अदमान आखो सतनाम शिवाय, एदी हाल उस बंदर वर्गी है जेन मार्केट मुश्की अनाज की मन बौरा रे। एक बर्तन है ओदा छोटा जिहा गलमा है, हेठो बड़ा लंबा चौड़ा है, बंदर ने देख लिया कि एदे विच खिल्लां पईआं ने, दाणे पए ने, उन हथ पा लिया ते हथ पा के मुठ विच पा लिया दाणे, हुण मुठ जां बाहर नूं कढदा वो नहीं निकलती। मरकत मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परयो, छड़दा नहीं, दाने छड़दे ते हाथ निकल सकता है, पर दाने पकड़े मुड़ समेत कढ़नी चाहता नहीं निकलता। हुण होया कि गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने नाचो घर घर द्वार, मार वो लैके ना नचता फिरदा घर घर द्वारे द्वार जाता है, छूटन को सहसा परे। इसे जन्म विच आके इस गल का पता लगना सतसंग जी, और इसे जन्म विच ही छुटकारा होना।
ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਆ ਸਾਸਨ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।

0: जागले नजर ना आवे बात ना पूछे के।
1: एक होर सतगुरां फरमान कहंदे ने सुल्तान होवां ए जेड़ा राजा साहब ने वचन कीता ना दीवान दीवान माने हुक्म दौलत धन दौलत ते दीवान जे जू बेचारे आर जा माल

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीरा मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इको ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागा है, तेन शरीर मिलिया सी वो शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिस दे वास्ते ए इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ए इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, पूंडी चाल इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी दी सारी ओहो गलत

दिस इज व्हाट वी हैव डन, ऐसे कीता है। स्वाद, सेंसुअल प्लेजर्स, बाद लड़ाई झगड़ा, माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात का हाथ किसी ही पे सगले लर लर मुआ, बाद बाद विवाद, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, हरेक दे जीवन च बाद विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसे दी धी नाल नहीं बनती, किसे दी सहुरे नाल नहीं बनती, किसे दी सस नाल नहीं बनती, किसे दी पति नाल नहीं बनती, किसे दी पत्नी नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती। बाद साडे जीवन च बाद बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता, उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद काट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसे दे थोड़ा जा काट किसे दे थोड़ा जा वद, सारे कहते लड़ लड़ के मर रहे हैं। इस चीज ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते, स्वाद बाद ईरख, फिर ईरखा ईरखा, मद माया अते माया दे नशे दे विच, मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया, इना चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता। तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ए प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, एना चीजां दे विच ही वेस्ट करती है। तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन के अंधले क्या पाया जागाए, कहंदे हन ए शरीर मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है। बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने, ए तेतों हिसाब तेतों ए सवाल ए तेतों लेखा पुछया जाना है। कहंदे हन

शरीर सरोवर भीतर है। शरीर सरोवर दे अंदर कल दे कीर्तन जैसे विचार ऐसी ना कि महाराज जी वो जड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहते हैं अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पहाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहते तेरे अंदर है। आज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हैं कि शरीर सरोवर पीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल्ड। कहंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हैं कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहंदे परम जोत, ओ जोत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम जोत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम जोत, पुरखोत्मो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु,

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतृण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आप

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी हो के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान हो के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो।

सकत हूँ विचार अबिचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकित हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासो बपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

चने तक फिरी आओ कै जगन कटे बेकार कै धरती जमी पार कै चंद्र सिर पार कै राजा तक द्वार कै विष्णु कै चंद भोग करोड़ी चंद नंद

0: पौन पानी में संत जन सुर उतार सभी धरती माल तन पर संत जान नाम गुरु सह ज्ञान में मुनि भय गया जम काल मुदा पहला वाइन चले न चंबुर पैर लान फिर सिर उठो रामा चटे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निर्भव निरंकार सच नाम जाकर किया सर जहान सेवक सेवक कर्म चढ़ाओ तिन्हीं रहन जिना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चकी चक थल मारो ले पाओ तनंत लाकू मा दानियां का पखी पौंगियां लेना साथ सुए चार को आइए जंत ना पौंगियां करता है तब
1: नरमा पाए सुए पैके तुझे सब कुए नाच नाच से चले सरोट ना जाए सुधना होए